आप फिर से तारीख दे देंगे और उस तारीख से पहले कामनी को पागल बनाकर पागल खाने में फेंक दिया जाएगा और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा ना ही इंसाफ मांगने वाला।

बहादुर सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख।